और हरे वाहिगुरु गावते ओए दरे सुनते और हरे वाहिगुरु बिन से बाप घने रे बिन से बाप घने रे सचिया बाजा बिन से बाप घने रे पैसे पारे तग दे कोई तारे वाहिगुरु पैसे पारे तग

मेरा सचिया बादशाह कोई ना वो ना गया ने मेरा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की।

0: सबकी जान ला, सबके तेरे बस तेरा कृपला। तेरे कर अनुदत कर मान महता, तेज अपना आप जल सर्वकला भरपूर दिशा चत करता। नानक दास संदास तदा गता
1: गुरु गरीब निवाज अंतर जामे सच्चे पातशाह जी महाराज धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी आप जी के पावन स्थान सचखंड दरबार जिया जी भरते हुए आप जी कृपा बाणी का सत्कार करते हुए बेअंत गुरमुखा प्यारिया शुभ भेद माया हाजिर होइए। सच्चे पातशाह नामदान सिखे दान की बख्शिश करनी, गुरु सिखी जवान बख्शो नाम देह आरोपता। समूह संगता दिया मनोकामना पूर्ण करने, नाम बाणी नाल प्यार रचना हाजिर दर प्रवान करनी, यात्रा सफली करनी।

दिल्ली में शीस गंध रकाब गंध बाला साहेब मंगला साहेब सतो चंडिया साहेब दी दे सुख दे दर्शन दीदार मेले बला रे।

ऐसे चन प्रताप ते देवन बड़े ओ प्रताप तीन लोक जय जय करे रे नाम सत्य आप दोहरा सकल द्वार को छाड़ के द्वार द्वार मैं गए की लाज अस गोविंदास द्वार दोहरा राज करेगा खालसा की रहे ना कोई पार होए सब लेंगे बचे शरण जो होए उठ गई सभा मलेच की कर कूड़ा पासार लंका बाजे फतेह का नायक लंके अवतार चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुक्ते स्वयं

प्रसाद तोमर छंद हर जन्म मरण विहीन दस चार चार प्रवीन अकलंक रूप अपार अंशिज तेज उदार अनभिज रूप दुरंत सब जगत भगत महंत जस तिलक भू भृत भान दस चार चार निधान अकलंक रूप अपार सब लोक शोक बिदार कल काल करम विहीन सब करम धर्म प्रवीण अनखंड अतुल प्रताप सब

कई कोक का वणंत कई भेद भेद कहंत कई शास्त्र सिमृत बखान कहूँ कथत ही सो पुराण। कई अग्नहोत्र करंत कई उर्ध ताप दुरंत कई उर्ध बाहु संन्यास कहूँ जोग भेष उदास। कहूँ निविली करम करंत कहूँ पावना हार दुरंत कहूँ तीर्थ दान अपार कहूँ जग करम उदार कहूँ।

खरी अभे खरी अदु खरी अद्वा खरी अकाल हरि अपाल हरि अछेद हरि अभेद हरि अजंत्र हरि अमंत्र हरि सोतेज हरि अतंत्र हरि अजात हरि अपात हरि अमित्र हरि अमात हरि अरोग हरि अशोक हरि अभरम हरि अकर्म हरि अजय हरि अभय हरि अभेद हरि अछेद हरि अखंड हरि अभंड हरि अदंड हरि प्रचंड हरि अतेव हरि अभेव हरि अजेव हरि अजेव हरि भजो हरि थपो हरि तपो हरि जपो हरि जलस्तु हि थलस्तु हि नदिस्तु हि नदस्तु हि वृक्षस्तु हि पतस्तु हि चितस्तु हि ऊर्ध्वस्तु हि भजस्तु अंग भजस्तु अंग रटस्तु अंग ठटस्तु अंग जिमीतु हि जमातु हि मकीतु हि मकातु हि अभूतु हि अभतु हि अछूतु हि अछतु हि जतस्तु हि व्रतस्तु हि गतस्तु

रूपं न रेखं न मोहं न क्रोहं न द्रोहं न द्वैखं न कर्मं न भर्मं न जन्मं न जातं न मित्रं न शत्रुं न पितरं न मातं न नेहं न गेहं न कामं न धामं न पुत्रं न मित्रं न शत्रुं न वामंग लेखं गभेखं गजूनि स्वरूपं सदा सिद्धदा बुद्धदा वृद्ध रूपं न ही जान जाय कछु रूप रेखं कहां वासता को फिर कौन भेखं कहां नामता को कहां कह कहां वे कहां कह बखानो कह मैं न आवे न रोगं न शोकं न मोहं न मातं न कर्मं न भर्मं न जन्मं न जातं अद्वैखं अभेखं अजूनि स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे परेयं परा परं प्रज्ञा प्रकाशी अछेदं गच्छयाद अद्वय अविनाशी न जातं न पातं न रूपं न रंगे नमो वाद भंगे नमो वाद भंगे किते कृष्ण से कीट कोटे उपाय सारे गड़े फेर मेटे बनाए अकादे अभयाद अद्वय अविनाशी परेयं परा परं पूर्ण प्रकाशी न आदं न व्याधं अगाधं स्वरूपे अखंड प्रतापाद अच्छा विभूते न जन्मं न मरणं न वर्णं न व्याधे अखंडे प्रचंडे अदंडे असाधे न नेहं न गेहं सनेहं सनाथे उदंडे अमंडे प्रचंडे प्रमाथे न जाते न पाते न सत्रे न मित्रे स्वभूते भविखे भवाने अचित्रे नारायं न रंगं न रूपं न रेखं न लोभं न जोभं अभूतं अपेखं न सत्रं न मित्रं न नेहं न गेहं सदेवं सदा सर्व सर्वत्र सनेहं न कामं न क्रोधं न लोभं न मोहं गजोनि अच्छयाद अद्वय अजोहं न जन्मं न मरणं न वर्णं न व्याधं न रोगं न शोकं अभयनिर्विखातं अछेदं अभेदं कर्मं कालं अखंडं अभण्डं प्रचण्डं अपालं न तातं न मातं न जातं न कायं न नेहं न गेहं न वर्मं न भायं न रूपं न भूपं न कायं न कर्मं न त्रासं न प्रासं न भेदं न वर्मं सदेवं सदा सिद्ध वृद्धं स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे युक्तं प्रभाद अनुक्तं प्रतापे अयुक्तं गच्छयाद अविक्त यथापे विभुक्तं गच्छयाद अच्छ स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे न नेहं न गेहं न शोकं न साकं परेयं पवित्रं पुनीतं गताकं न जातं न पातं न मित्रं न मंत्रे नमो एक तंत्रे न धर्मं न भर्मं न सर्मं न साके न भर्मं न चर्मं न कर्मं न वाके न सत्रं न मित्रं न पुत्रं स्वरूपे नमो वाद।

कहूँ चित्र रूपं कहूँ परम प्रज्ञा कहूँ सर्वभूपं कहूँ नेह गृहं कहूँ देह दुखं कहूँ औखधि रोग के शोक सुखं कहूँ देव विद्या कहूँ दैत बानी कहूँ जच गंधर्व के नर कहानी कहूँ राजसी सातकी तामसी हो कहूँ योग विद्या धरे तापसी हो कहूँ रोग रहता कहूँ जोग जुगतं कहूँ भूमि की भुगत मैं भरम भुगतं कहूँ देव कन्या कहूँ दानवी हो कहूँ जच विद्या धरे मानवी हो कहूँ राजसी हो कहूँ राजकन्या कहूँ सृष्ट की पृष्ठ की रिष्ट पन्या कहूँ वेद विद्या कहूँ व्योम बानी कहूँ कोक की काव कथा कहानी कहूँ अद्र सारंग कहूँ भद्र रूपं कहूँ मद्र बानी कहूँ क्षुद्र स्वरूपं कहूँ वेद विद्या कहूँ काव रूपं कहूँ चेष्टा चार चित्रंग स्वरूपं कहूँ परम पुराण को पार पावे कहूँ बैठ कुरान की गीत गावे कहूँ शुद्ध शेखं कहूँ ब्रह्म धर्मं कहूँ वृद्ध अवस्था कहूँ बाल कर्मं कहूँ ज्वाल।

अच्छा स्वरूप ना संतुट तेज अनखुट भंडार दाता दुरंत सर्वंग प्रकार अनभूत तेज अंशित जगात करता सदीव हरता सनाद आसन अडोल अनभूत गरम दाता दयाल अनभूत धर्म जय शत्रु मित्र नहीं जन्म जात जय पुत्र ब्रात नहीं मित्र मात जय करम भरम नहीं धनम ध्यान जय नेह गेह नहीं प्योतबान जय जात पात नहीं शत्रु मित्र जय नेह गेह नहीं चिन्ह चित्र जय रंग रूप नहीं राग रेख जय जन्म जात नहीं भरम भेख जय करम भरम नहीं जात पात नहीं नेह गेह नहीं पितृ मात जय नाम थाम नहीं वर्ग व्याध जय रोग शोक नहीं सत्र साध जय त्रास वास नहीं देह नाश जय आद अंत नहीं रूप रास जय रोग शोक नहीं जोग जुगत जय त्रास आस नहीं भूम भुगत जय काल व्याल कट्य।

ध्यान काज मुंजन अनंत कई कल्प जोग साधत दुरंत। तन सीत घाम बरखा सहंत कई कल्प एक आसन बितंत कई जतन जोग विद्या विचार साधंत तद पावत न पार। कई उर्द बाह देशन भ्रमंत कई उर्द मद पावक झुलंत कई सिमृत शास्त्र दुचरंत वेद कई कोक काव कथत कते। कई अग्न होत्र कई पवन हार कई करत कूट मृत को आहार कई करत साक पै पत्र बच्छ नहीं तदब देव हो वत प्रत्यक्ष। कई गीत गान गंधर्व रीत कई वेद शास्त्र विद्या प्रतीत कहूँ वेद रीत जगयाद करम कहूँ अग्न होत्र कहूँ तीर्थ धर्म। कई देश देश बाखार टंत कई देश देश विद्या पटंत कई करत पांत पांतन विचार नहीं नयक दास पायत न पार। कई तीरथ तीरथ भरमत सो भरम कई यज्ञ होत्र कई देव करम कई कर्त वीर विद्या विचार नहीं तदब दास पायत न पार। कहूँ राज रीत कहूँ जोग धरम कई सिमृत शास्त्र उचरत सो करम न्यौली याद करम कहूँ हस्तदान कहूँ अश्वमेध मुख को बखान। कहूँ करत ब्रह्म विद्या विचार कहूँ जोग रीत कहूँ वृद्ध चार कहूँ करत जच गंधर्व गान कहूँ धूप दीप कहूँ अर्घ दान। कहूँ पितृ कर्म कहूँ वेद रीत कहूँ नृत्य नाच कहूँ गान गीत कहूँ करत सास सिमृत उचार कई भजत एक पग निराधार। कई नेह देह कई गेह वास कई भ्रमत देश देशन उदास कई जल निवास कई अघन ताप कई जपत उर्द लटकंत जाप। कई जपत जोग कल्पं प्रजंत नहीं तदब दास पायतन अंत कई करत कोट विद्या विचार नहीं तदब देश देखे मुरार। बिन भगत सकत नहीं परत पान बहु करत हो मर जग दान बिन एक नाम एक चित्त लीन फोकटू सर्व धर्मा विहीन। त्वा प्रसाद तोटक छंद जय जंप जोगण जूह जुअंग भय कंप मेर पयाल भोंग तप ताप सर्व जलेर थलंग धन उचरत इंद्र कुमेर बलंग।

देव वरंग सब कीनी दीन जमीन जमाजे रचेंग सर्व मकीन मका। जय राग न रूप न रेख रुखंग जे ताप न साप न शोक सुखंग जे रोग न शोक न भोग भुयंग जे खेद न भेद न छेद छयंग। जय जात न पात न मात पितंग जे रचेंग छत्रि छत्र चितंग जे राग न रेख न रोग भणंग जे द्वैख न दाग न दोख गणंग। जय अंडे ते ब्रह्मंड रचेव दस चार करी नवखंड सचेव रज तामस तेज तेज कियो अनुभव पद आप प्रचंड लियो। श्रेय सिंध रूपिंद नगेंद नगंग श्रेय जज गंधर्व फणिंद भुजंग रज देवा देवा भेव नरंग नरपान रिपाल कराल त्रिगंग। कई कीट पतंग भुजंग नरंग रच अंड सेतज उद भुजंग की ये देवा देव सराध पितंग अन खंड प्रताप प्रचंड गतंग। प्रभ जात न पात न ज्योत जुतंग जे तात न मात न ब्रात सुतंग जे रोग न शोक न भोग भुवंग जे जम्प किन्नर जछ जुवंग। नर नार नपुंसक जाहि किए गण किन्नर जछ भुजंग दिए गज बाजर था दिख बांध गणंग भूत भविख भवा।

पाए छपाए दिए जे लोग चतुर्दश चार रचे नर गंधर्व देवा देव सच्चे अंधूता भूत छूत मतंगन घात व्याद अनाद गतंगन खेद भेद छेद नरंगजे चार चतुर्दश चक्र फिरंग जय राग न रंग न रेख रुगंग जे शोक न भोग न जोग जुगंग भू भंजन कंजन आदि सरंग जे बंदत देवा देव नरंग गण किन नर जाच भुजंग रचे मन माणक मोती लाल सुचे अन भंज प्रभा अन गंज वृतंग जे पार न पावत पूर मतंग अन खंड स्वरूपा दंड प्रभा जय जंपत भेद पुराण सभा जय वेद कते अनंत कह जय भूत भूत न भेद लह जय वेद पुराण कते जपै सुत सिंध दो मुख ताप तपै गई कल्पन लो तप ताप करे नहीं नै कृपा निध पान परै जय फोकट धर्म सबै तज है एक चित्त कृपा निध को जप है देव याप वसाकर को तर है भव भूल न देह पुनर्धर है एक नाम बिना नहीं कोट प्रति इम वेद उचारत सार सुति जो वारस के जस के रस है देव भूल न काल फंदा फस है त्वा प्रसाद नराज छंद अगंज आद देव है अभंज भंज जानिया भूत भूत है सदा गंज गंज मानिया अदेव देव है सदा भेव भेव नाथ है समस्त सिद्ध वृद्ध दास दीव सर्वसात है अनाथ नाथ नाथ है अभंज भंज है सदा गंज गंज गंज है सदीव सिद्ध वृद्ध दा अनूप रूप स्वरूप है अछिज तेज मानिय सदीव सिद्ध शुद्ध दा प्रताप पत्र जानिय न राग रंग रूप है न रोग राग रेग है अदोग दाग दग है अभूत भ्रम फेक है न तात मात जात है न पात चिहन भरण है अदेक से कभेक है सदीव विश्वभरण है विश्वंबर विश्वनाथ है विशेक विश्वभरण है जिमी जमान के विक सदीव करम भरम है अद्वैक है अभेक है अलेख नाथ जानिय सदीव सर्वठौर में विशेख अन मानिय न चंद्र में न तंत्र में न मंत्र बस आवई पुराण अवपुराण नेत नेत कह बतावई न करम में न धर्म में न भरम में बताइय गंज आदि देव है कहो सो कैस पाइय जिमी जमान के बिके समस्त एक ज्योत है न घाट है न बाढ़ है न घाट बाढ़ होत है न हन है न मान है समान रूप जानिए मकीन ओ मकान अप्रमान तेज मानिए न देह है न गेह है न जात है न पात है न मंत्र है न मित्र है न तात है न मात है न अंग है न रंग है न संग है न साथ है न दुख है न दाग है न द्वैख है न देह है न सिंह है न स्यार है न राव है न रंग है न मान है न मौत है न साक है न संक है न जच है न गंधर्व है न नर है न नार है न चोर है न साव है न साह को कुमार है न नेह है न गेह है न देह को बनाओ है न छल है न छिद्र है न छल को मिलाओ है न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को स्वरूप है न राग है न रंग है न रेख है न रूप है न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को बनाओ है न छल है न छिद्र है न छाया

है, पवित्र है, पुनीत है, पुराण है, अगंज है, अभंज है, करीम है, कुरान है, अकाल है, अपाल है, ख्याल है, अखंड है, न रोग है, न शोक है, न भेद है, न भंड है, न अंग है, न रंग है, न संग है, न सात है, प्रिया है, पवित्र है, पुनीत है, प्रमात है, न सीत है, न सोच है, न घ्राम है, न घाम है, न लोभ है, न मोह है, न क्रोध है, न काम है, न देव है, न दैत है, न नर को स्वरूप है, न छल है, न छिद्र है, न छिद्र के विभूत है, न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न द्वैख है, न भेख है, न द्वी है, न द्रोह है, न काल है, न बाल है, सदीव दयाल रूप है, अगंज है, अभंज है, अभ्रम है, अभूत है, अछेद छेद है, सदा गंज गंज गंज है, अभूत भेक है, वलीय रूप राग रंग है, न द्वैख है, न भेख है, न काम क्रोध कर्म है, न जात है, न पात है, न छिद्र चिहन वर्ण है, बेअंत है, अनंत है, अनंत तेज जानिए, अभूम अभिज है, सदा छिज तेज मानिए, न आद है, न व्याद है, अगाध रूप लेखिए, दोख है, अदाग है, अच्छे प्रताप देखिए, न कर्म है, न भ्रम है, न धर्म को प्रभाव है, न जंत्र है, न तंत्र है, न मंत्र को रलाव है, न छल है, न छिद्र है, न छिद्र को स्वरूप है, अभंग है, अनंग है, अगंज

गजाधपि नराधपि करंत सेव है सदा सिदस्पति तपस्पति वनस्पति जपस्सदा अगस्त आदि जे बड़े तपस्पि विशेखिये बेअंत बेअंत बेअंत को करंत पाठ पेखिये अगाध आदि देव की अनाद बात मानिए न जात पात मंत्र मित्र सत्र स्नेह जानिए सदीव सर्वलोक के कृपाल ख्याल में रहे तुरंत द्रोह देह के अनंत भांत सोद है त्व प्रसाद रुआ मल छंद।

रूप रेख न रंग जाको राग रूप न रंग सर्व लायक सर्व गायक सर्व ते अनभंग सर्व दाता सर्व ज्ञाता सर्व को प्रतपाल दीन बंध दयाल स्वामी आदि देवपाल दीन बंध प्रवीण श्री पद सर्व को करतार बरन चिहन न चक्र जाको चक्र चिहन कार जात पात न गोत्र गाता रूप रेख न बरन सर्व दाता सर्व ज्ञाता सर्व भू को बरन दुष्ट गंजन शत्रु भंजन परम पुरक प्रमाद दुष्ट हर्ता श्रेष्ठ कर्ता जगत में जयकात भूत भव भवेख भवान प्रमाण देव गंज आदंता नाथ श्रीपद परम पुरख अभंज धर्म के अन करम जेतक कीन तौन पसार देव देव गंधर्व किन्नर मच कछ अपार भूमका जले थले महिमान्य जह नाम दुष्ट हर्ता पुष्ट कर्ता श्रेष्ठ हर्ता काम दुष्ट हरना श्रेष्ठ करना दयाल लाल गोबिंद मित्र बालक शत्रु गालक दीन दयाल मुकंद अघौ दंडन दुष्ट खंडन काल हुंके काल दुष्ट हरनंग पुष्ट करनंग सर्व के प्रतपाल सर्व कर्ता सर्व हर्ता सर्व के अनकाम सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व के निजभाम सर्व भुक्ता सर्व

दुष्ट दंडन पुष्ट खंडन आदि देवा खंड भूम का जले थले मह जपत जाप अमंड श्रेष्ठ चार विचार जेते जानिए सब चार आदि देवा पास रिपत दुष्ट पुष्ट प्रहार अन्नदाता ज्ञान ज्ञाता सर्व मान महेंद्र वेद व्यास करे कई दिन कोटेन्द्र उपेन्द्र जन्म जाता कर्म ज्ञाता धर्म चार विचार वेद भेव न पावे शिव रुद्र मुख चार कोटेन्द्र उपेन्द्र व्यास नक सनत कुमार काय काय तके सब कुंचकृत भे मुख चार आद अंत न मत जाको भूत भव भवान सत दुआ पर तृतीय कल युग चत्र काल प्रधान ध्याय ध्याय थके महामुन गाय गंधर्व पार हर हर थके सबे नहीं पाइये तह पार नारद आदिक भेद व्यासक मुन महान अनंत ध्याय ध्याय थके सब कर कोट कष्ट दुरंत गाय गाय थके गंधर्व नाच पछर पार सोद सोद थके महासुर पायो नह पार त्व प्रसाद दोहरा एक समय श्री आत्मा उचर्यो मत्स्यो बैन सप्रताप जगदीश को कहो सकल विद तैन दोहरा को आत्मा स्वरूप है कहाँ श्रेष्ठ को विचार कौन धर्म को कर्म है कहो सकल विस्तार दोहरा कह जीतब कह मरण है कवन सुरक कह नरक को सुगड़ा को मूढ़ता कहाँ तरक तरक दोहरा को निंदा जस है कवन

कहां रंक राजा कवन हरक सो कह कवन को रोगी रागी कवन कहो तत् मोह तवन दोहरा कवन ऋष्ट को पुष्ट है कहां सृष्ट को विचार कवन सृष्ट को वृष्ट है कहो सकल विस्तार दोहरा।

लोकन के करता हरता जल मै थल मै भरता प्रभ वह है दीन दयाल दया कर श्रीपद सुंदर श्री पद्मापते है। काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न भोग न भय है। देह विहीन स्नेह सबोधन नेह विरक्त अगे अच्छ है। जान को देत अजान को देत जमीन को देत जमान को दह है। काहे को डोलत है तुमरी सुत सुंदर श्री पद्मापत है। रोगंते अर सोगंते जल जोगंते वो बांध बचावे शत्रु ने एक चलावत घावत उतन एक न लागन पावे। राखत है अपनो कर दे कर पाप संबोहन भेटन पावे। और की बात कहाँ कहे तो सो सो पेट ही के पट बीच बचावे। जछ भुजंग सो दानव देव भेव तुम्हें सब ही कर ध्यावे। भूमा का अस्पताल रसातल जछ भुजंग सब सन्यावे। पाए सके नहीं पार प्रवाहों को नेत ही नेत वेद बतावे। खोज थके सब ही खुजिया सुर हार परे हर हाथ न आवे। नारद से चतुरानंद से रुम नारिक से सब हु मिल गायो। वेद गते न भेद लख्यो सब हार परे हर हाथ न आयो। पाए सके नहीं पार उमापद सिद्ध सनाद सनंतन ध्यायो। ध्यान धरो ते को मन बैजे को अमितोज सब जग छायो। वेद पुराण कतेब कुरान अभेद नृपान सब पचहारे। भेद न पाए सके उन वेद को खेदत है अनछेद पुकारे। राग न रूप न रेख न रंग न साख न शोक न संग त्यारे। आद न तक आद पेकत वैग जप्यो तिन ही खुलता रे। तीरथ कोट किए स्नान दिए बोधान महाव्रत धारे। देश फिर कर बेस्त बोधन केस धरे न मिले हर प्यारे। आसन कोट करे अष्टांग धरे बहु न्यास करे मुख कारे। दीन दयाल काल बजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे। त्व प्रसाद कबित अत्र के चलैया चित छत्र के धरय छत्र धार्य के छलैया महासत्रन के साल हैं। दान के दिवैया महामान के बढ़ैया अवसान के दिवैया है कटैया जम जाल हैं। जोध के जितैया विरुद्ध के मिटैया महाबुद्ध के दिवैया महामान हूँ के मान हैं। ज्ञान हूँ के ज्ञाता महाबुद्धता के दाता देव काल हूँ के काल महाकाल हूँ के काल हैं। पूर्वी न पार पावे हिंगुला हिमालय ध्याव गोर कर तेजी गुण गावे तेरे नाम है। जोगी जोग साधे पौन साधना की तेग बांधे अरब के अरबी अराध तेरे नाम है। फरा के फिरंगी माने कंधारी कुरेसी जाने पश्चिम के पश्चिमी पछाने निज काम है। मरटा मंगेल तेरी मन सो तपस्या कर देड़ वैत लंगी पहचाने धर्म धाम है। बंग के बंगाली फिर हंग के फिरंगा वाली दिल्ली के दिलवाली तेरी आगे में चलत है। रोह के रोहेले माग देश के मंगेले वीर बंग से बुंदेले बाप पुंज को मलत है। गोखा गुन गावे चिन मचीन के शेष न्याय ते पति दियाए दोग देह के दलत है। जिन्हें तोहे जायो तिन्ह पूर्ण प्रताप पायो सर्व धन धाम फल फूल स्वयं फलत है। देव देवतान को सुरेश दानवान को महेश गंग दान को अभेश कहियत है। रंग में रंगीन राग रूप में प्रवीण और काहू पे न दीन सादा दीन कहियत है। पाइये न पार देज पुंज में अपार सर्व विद्या के उदार है अपार कहियत है। हाथी की पुकार पल पाछे पहुँचत ताहि चिटकी चिंगार पहले ही सुनियत है। कित्ते इंद्र द्वार कित्ते ब्रह्मा मुख चार कित्ते कृष्णा अवतार कित्ते राम कहियत है। कित्ते ससुरासी कित्ते सूरज प्रकाशी कित्ते मुंडिया उदासी जोग द्वार दहियत है। कित्ते महाधीन कित्ते व्यास से ब्रवीन कित्ते कुमेर कुलीन कित्ते

हेने मले दे मानस सद सुरु नितला दे तार ने के जी ओट न्यास राधे असरे गुरु गरीब निवाजी आप जी दे हाजिर उस कीर्तन कर दे हम यहां सबद बेटा जरूर यीशु गुरु सच्चे पातशाह जी महाराज जिना जिना मैं पहलो उस बद बेटा जरूर यीशु गुरु सच्चे पातशाह जी महाराज जो सब ना दिल के लाउने चढ़दी कला बख्शनी गुरु नानक नाम चढ़दी कलाओ तेरे भाणे सर्वदा पर सुखो सबद प्यारियो।

जात में जोत जोत में जाता कलकला भरपूर रहया तू सच्चा सा सुख सवालो जिन कीती सो पार पया कहो नानक ते किया बाता जो कुछ करना सो कर रहया सो।

रहाओ। सब सुरती मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई। ज्ञानी ध्यानी गुर गरहाई, कहन न जाई तेरी तिल वड्याई। सब सत सब तप सब चंगियाईया, सिद्धां पुरखां कियां वड्याईया। तुद विण सिद्धि कनै न पाईया, करम मिलै नाही ठाकर हाईया। आखण वाला क्या वेचारा, सिफती भरे तेरे भंडारा। जिस तों दहे तसै क्या चारा, नानक सच सवरण हारा। आसा महला पहला, आखां जीवां विसरै मर जाओ। आखण औखा साचा नाओ, सचे नाम की लागै भूख। उत भूखै खाए चलिय दुख, सो क्यों विसरै मेरी माए। साचा साहिब साचै नाए रहाओ, सचे नाम की तिल वड्याई। आख थके कीमत नहीं पाई, जे सब मिलकै आखण पाहे। वड्डा न होवै घाट ना जाए, ना ओह मरै ना होवै सोग। देंदा रह न चुकै भोग, गुण एहो होर नाही कोए। ना को होआ ना को होए, जीवड़ आप तेवड़ तेरी दात। जिंदन कर कै कीती रात, खसम विसारह ते कम जात। नानक नावै बाज सुनात, राग गुजरी महला चौथा। हर के जन सदगुर सदपुरखा, बिनौ करौ गुर पास। हम कीरे कर्म सतगुर।

संगत गुण प्रगास जन हर हर हर रस नाम ना पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर शरण संगत नहीं आए धृग जीवै धृग जीवास जिन हर जिन सतगुर संगत पाई तिन धुर मस्तक लखया लखास धन धन सत संगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम प्रगास राग गुजरी महला पंजवा काहे रे मंचत वह उदम जा आहर हर जियो परिया सैल पत्थर मह जंत उपाय ताका रजक आगे कर धरिया मेरे माधव जी सत्संगत मिले सो तरिया गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरिया रहाओ जन पिता लोक सतबंता कोय न किसकी धरिया सिर सिर रजक संबाहे ठाकुर काहे मन भाव करिया ऊडे ऊड आवे सैकु सा तिस पाछे पछरे छरिया तिन कवन खलावे कवन चुगावे मन मह सिमरन करिया।

हर अनक अनेक अनंता, तेरी अनक करै हर पूजा जी, तब तापह जपह बेंता, तेरे अनेक पड़ै बहु सिमृत शास्त्र जी, कर क्रिया खट करम करंता। से भगत भले जन नानक जी, जो भावे मेरे हर भगवंता, तू आद पुरख अपरंपर करता जी, तद जेवड़ियावर ना कोई, तू जग जग एको सदा सदा, तू एको जी, तू नह चल करता सोई, तुद आपे भावे सोई वरते जी, तू आपे कर सोई, तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी, तुद आपे सिरज सब गोई, जन नानक गुण गावे करते के जी, जो सब सहका जानोई।

चाओ पई। सम सतरै सैस बणी जय अर्ध सैस फुन तीन कह जय। भादव सुदी अष्टमी रवारा तीर सतद्रव ग्रंथ सुधारा।

दोहरा। राम कथा जुग जुग अटल सब कोई भक्त नेत, स्वर्ग बास रघुबर करा सगरी पुरी समेत। चौपाई जो ए कथा सुने अर गावे, दुख पाप तह निकट न आवे। बिशन भगत किए फल होई, आद ब्याज छ सकै न कोई। सम सत्रह सैस पचावन, हाड वदी प्रथम सुख दावन। तौ प्रसाद कर।

तरंग श्री भगवत पूरन कियो रघुवर कथा पर संग दोहरा साध असाध जानो नहीं बाद सुबाद विवाद ग्रंथ सकल।

रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकार ओ करे तेरा कारज सब सवारना। सब नागलां समरत स्वामी सो क्यों मनो विसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या नाही घर तेरै, घर तां तेरै सब किछ है जिस दे सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे। नाम जिन कै मन वसिया वाजे शब्द घनेरे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरै, साचा नाम मेरा आधारो। साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया। कर शान सुख मन आय वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया। सदा कुरबान किता गुरु विटों जिस दिया एह वडियाइया। कह नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो। साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द घर सभागै, घर सभागै शब्द वाजे कला जत कर धारिया। पंच दूत दवस कीते काल कंटक मारिया। दुर करम पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे। कह नानक तह सुख हो आतित घर अनहद वाजे। आनंद सुनो वडभागी हो सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विस।

संकट हरण सब सिद्ध की करण चंड तारण तरन सरन लोचन विशाल है। आद जाकै आहम है अंत कुना पारावार सरण उबारण करण प्रतिपार है। असुर संघारण अनेक दुख जारण सो पतित उदाहरण छड़ाए जमजाल है। देवी बर लायक सब बुद्धि हूँ की दायक सदेव बर पायक बनावे ग्रंथ हार सवैया। आदर सुधा हूँ की जो तनिया मैं का सुर की मरता फुन जो इंद्र को राजय की तिवैया करता बद सुमन सुमह दो जो जाप कह ऐ सेव करे बर को सुल है मन इच्छत सो लोक बिखय की समतोला।

अथ देवी जुकी उस्तत कथनंग भुजंग प्रयात शानदार तुई अस्त्रणी शस्त्रणी आप रूपा तुई अंबिका जंब हंती अनुपा तुई अंबिका शीतला तोतला है पृथ्वी भूमा काश तै ही किया है तुई मुंड मर्दी कपरदी भवानी तुई कालका जल पा राजधानी महाजोग माया तुई ईश्वरी है तुई तेज आकाश तंबोमयी है तुई रिष्टनी पुष्टनी जोग माया तुई मोसो चौदहू लोक छाया तुई सुंभ नै सुंभ हंती पवानी तुई चौदहू लोक की जोत जानी तुई रिष्टनी पुष्टनी शस्त्रनी है तुई कष्टनी हरतनी अष्टनी है तुई जोग माया तुई बागबानी तुई अंबिका जंभा राजधानी मां जोग माया मां राजधानी पवि भावनी पूत पभ्यंग पवानी चरी आचरणी खेचरणी भूपणी है मां बाणी अपनी रूपणी है महा महाभैरवी भूतनेसरी पवानी पवि पावनी पभ्यंग काली कृपाणी जया अजया सिंगला पिंगला है शिवा शीतला मंगला तोतला है तुई अक्षरा पछरा बुध बिरदया तुई भैरवी भूपणी सुध सिद्धिया मां बाणी अश्रणी शस्त्रधारी तुई तीर तलवार काती कटारी तुई राशि सातकी तामसी है तुई कालका बृदनी औजुआ तुई देव दानवी देवनी जाचनी है तुई किंदरनी मछनी कछनी है तुई देव ते शेषनी दानवेसा त्रै बृष्टनी है तुई आस्त्र पेशा तुई राज राजेश्वरी योग माया महा मोह सो चौदहू लोक छाया तुई ब्राह्मी वैष्णवी श्री पवानी तुई बासवी ईश्वरी कर्तिकयानी तुई अंबिका दुष्टहा मुंडमाली तुई कष्ट हंती कृपा कृपाली तुम्हें ब्राह्मणी हुए हिरंगनाश मारियो हिरंगनाश संग सिंगणी हुए पिछारियो तुम्हें बावनी हुए तीनों लोक मान पे तुम्हें देवदानों की जाच थापे तुम्हें राम हुए कह दशा ग्रीव खंडियो तुम्हें कंस तुम्हें कृष्ण हुए कंस केसी बिहंडियो तुम्हें काल का जाल पा तुम्हें काल पा हुए बड़ा लाच कायो तुम्हें सुंभ नै सुंभ दानो कपायो दोहरा दास जानकर दास पर की जय कृपा पार आप हाथ दे राख मय मन करम वचन विचार जाओ भाई मैं ना गणेश है प्रथम मनाऊं किशन बिशन कब हुने तिहाऊं कान सुने पहचान ना तिन सो निवला की मोरी पग नि सो मां काल रखवार हमारो मां लोभ मैं किंकर थारो अपना जान करो रखवार बां गहे की लाज विचार अपना जान मुझे प्रतवरिया चुन चुन सत्र हमारे मरिया देख तेग जग मैं दो चलै राख आप मोय अवर ना दलै तुम मम करो सदा प्रतबारा तुम साहिब मैं दास तिहारा जान अपना मुझे निवाज आप करो हमरे सबका तुम हो सब राजन के राजा आपे आप गरीब निवाजा दास जान कर कृपा करो मोय हार परा मैं आन द्वार तोहे अपना जान करो प्रतपारा तुम साहिब मैं किंकर थारा दास जान दाय हाथ बारो हमरे सब बैरियन संघारो प्रथम धरो भगवत को ध्याना बाहर करो कविता बिंदनाना कृष्ण जथा मत चरित विचारो चूक होए कबले हो सुधारो एत श्री देवी।

सबैया शानदार। पाप समूह विनाशन काओ कल की अवतार कहावेंगे, तुरकाश तुरंग सपाश बड़ो कड़ काल कृपान कपावेंगे, नेक से जिम के हर पर्वत ते तत्सोभ दिवालय पावेंगे, पल भाग पयाय संबल के हर जू हर मंदिर आवेंगे, रूप अनूप स्वरूप महालख देव अदेव लजावेंगे, अर मार सुधार कै टार कनो बवरो कल धर्म चलावेंगे, सब साथ उबाल लह कर जाए दुख आंच न लागन पावेंगे, पल भाग पया संभल के हर जू हर मंदिर आवेंगे, दानव मार अपार बड़े रणजीत निशान बजावेंगे, खलटार हजार करोड़ किते कल के कल कृत बढ़ावेंगे, प्रगट है जित ही ति धर्म दशा लख पापन पुंज बरावेंगे, पल भाग पया संभल के हर जू हर मंदिर आवेंगे, छीन महादिज दीन दशा लख दीन दयाल रसावेंगे, खग काढ़ अभंग निसंग हठी रण रंग तुरंग नचावेंगे, रिवजीत अजीत अभीत बड़े अवनी पे सुबह जस गावेंगे, पल भाग पया संभल के हर जू हर मंदिर आवेंगे, से सुरेश महेश गणेश निशेष भले जस गावेंगे, गणपूत प्रेत पिसाज परी जय सद ननद सुनावेंगे, नर नारद तुम्बर किन्नर जच सो बीन प्रबीन बजावेंगे, पल भाग पया संभल के हर जू हर मंदिर आवेंगे, ताल मृदंग मुचंग उपंग सुरंग से नाथ सुनावेंगे, डफ बार तरंग रबाब धुरी रण रंग असंख बजावेंगे, गान दुंधब ढोलन घोर घनी सुन सत्र सबै मुरछावेंगे, पल भाग पया संभल के हर जू हर मंदिर आवेंगे, तीर तुफंग कमान सुरंग दुरंग निखंग सुहावेंगे, बरछी अर बैरक बाण तुजा पाट बात लगे फहरावेंगे, गण जच पुजंग सो किन्नर सिद्ध प्रसिद्ध सबै जसगावेंगे, पल भाग पया संभल के हर जू हर मंदिर आवेंगे, कांच कृपान कम कटारी कमान सुरंग निखंग छकावेंगे, बरछी अर टहाल गदा परसुकल सूर ते सूल प्रमावेंगे, अध क्रुद तुफायरन मूर्धन मो सर ओग प्र ओग जलावेंगे, पल भाग पया ए संभल के हर जू हर मंदर आवेंगे, तेज प्रचंड अखंड मां छब दुर्जन देख परावेंगे, जिम पौन प्रचंड बह पतुआ सब आपन ही उड़ जावेंगे, बढ़ है जित ही ती धर्म दिशा ओं पापन ढूंढत पावेंगे, पल भाग पया संभल के हर जू हर मंदर आवेंगे, छूटत बान कमानन के रण छाड़ पटवा पहरावेंगे, गण वीर पिताल कराल प्रभा रण मूर्धन मध सुहावेंगे, गण सिद्ध प्रसिद्ध समृद्ध सनै कर उचाय कै कृत सुनावेंगे, पल भाग पया संभल के हर जू हर मंदिर आवेंगे, रूप अनूप स्वरूप महा अंग देख अनंग लजावेंगे, पव भूत पविक पवान सदा सब ठार सबै ठहरावेंगे, पव पार पार निवारण को कल की अवतार कहावेंगे, पल भाग पया संभल के हर जू हर मंदिर आवेंगे, भूम को पहार उतार बड़े बड़े आश बड़ी छपावेंगे, खल टार जुजार बरियार हटी कान को खन जू कहरावेंगे, कल नारद भूत पिसाच परी जय पत्र तरत्र सुनावेंगे, पल भाग पया संभल के हर जू हर मंदिर आवेंगे, चार कृपान जुझार बड़े रण मध महा छपावेंगे, तार लोथ पलोथ बिथार कणी कान की घाट जू कहरावेंगे, चतुरानन रोद्र चरार चढ़जे जय साध ननद सुनावेंगे, पल भाग पया संभल के हर जू हर मंदिर आवेंगे, तार प्रमाण उचान तुजा लख देव अदेव तरसावेंगे, गल की गज गाह गदा बरसी गय पान कृपान प्रमावेंगे, गज पा जग पाप समूह विनाशन कौ कल की कल कल कल की कल धर्म चलावेंगे, पल भाग पया संभल के हर जू हर मंदिर आवेंगे, पान कृपान अजान पुजारण रूपमान दिखावेंगे, प्रतमान सुजान अप्रपान प्रभा लख व्योम विवान लजावेंगे, गण भूत पिसाच प्रेत परी मिल जीत कै गीत गवावेंगे, पल भाग पया संभल के हर जू हर मंदिर आवेंगे, बाजत डंक तंग सुबै रण रंग तुरंग नचावेंगे, कस बान कमान गदा बरछी कल सूर ते सूल प्रमावेंगे, गण देव अदेव पिसाच परी रण देख सुबह रह सावेंगे।

मोहिनी छंद जय जय देवी भवानी पवखंडी दुर्गा सर्वाणी केसरिया बाही कौमारी पैखंडी भैरव उद्धारी अकलंका अत्रि शतराणी मोहिनी अंग सर्वंग लोकानी रक्तांगी सावी सावित्री परमेश्वरी परमा पावित्री तोतलिया जय वा कौमारी पवर्णी हरणी उद्धारी रूपा पूपा बुद्धाणी जय जम्पै सुदंग सिद्धाणी जगतारी भारी भगतायंग करतारी पारी मुक्तायंग सुंदर गोफनिया गुरजाणी दे भरणी हरणी भामाणी पिम भरिया जच्छंग सर्वाणी गंधर्वी सिद्धंग चाराणी अकलंग स्वरूपंग निर्मलियंग कण मध्य मानो चंचलियंग अस्पाणंग माणंग लोकायंग सुख करणी हरणी शोकायंग दुष्ट हंति संतंग उद्धारी अनछेदा भेदा कौमारी आनंदी गिरजा कौमारी अनछेदा भेदा उद्धारी अनगंज अपंजा खंकाली मृग नैणी रूपंग उज्जाली रक्तांगी रुद्रा पिंगाची कड़कच्छी स्वच्छी हुल्लासी रक्ताली रामा तौलाली मोहनिया माई खंकाली जगदानी भाई पावाणी पवखंडी दुर्गा देवाणी रुद्रांगी रुद्रा रक्तांगी परमेश्वरी पमाई धर्मांगी मैं खासुर धरणी मैं पाली चिछरासुर हंती खंकाली अस्पाणी माणी देवाणी जयदाती दुर्गा पावाणी पिंगाछी परमा पावित्री सावित्री संध्या गायत्री पै हरणी पीमा पामाणी जय देवी दुर्गा देवाणी दुर्गा दलग्राही देवाणी पै खंडी सर्वंग भूताणी जय चंडी मुंडी सत्रहंत्री जय दाता माता जय अंती संसरणी तरणी लोकाणी पिंग भरणी तरणी दैताणी के करणी कारण लोकाणी दुखरणी देवंग इंद्राणी सोम बहंती जयंती खंकाली कंकड़िया रूपा रक्ताली तोतलिया जेवा हिंसिंधुलिया हिंगुलिया माता पिंगुलिया चंचली चित्रा चित्रांगी पिंपरिया पीमा सर्वांगी बदपूपा पूपा जुजवाली अकलंका माई निर्माली उछलै लंकुड़िया छतराला पिंपरिया पैरो पौहाला जय दाता माता जय दाणी लोकेशी दुर्गा पामाणी सम्मोही सर्वंग जगतायंग निद्रा छुदा पिपासायंग जय कालंग रात्रि सक्राणी उद्धारी भारी भगताणी जय माही गाई बेदाणी अनछिद अपेदा खेदाणी पै हरणी सर्वंग संताणी जय दाता माता कृपाणी अचकड़ा छंद अंबका तोतला शीतला साकणी सिंधरी सोप्रभा सोप्रमा डाकणी सावजा संभरी सिंधुला दुखहरी सुमिला संभिला सोप्रभा दुधरी भावना पैहरी भूतली पैहरा टाकणी झाकणी साकणी सिंधुला दुधरा दुर्मुखा दुर्कटा दुधरी कंपिला जंपिला हिंगुला पैहरी चित्रणी जापणी चारणी चछरा हिंगुला पिंगुला गंधर्वा जछणी बरमणी चरमणी परघणी प्रासणी खड़गणी गड़गणी सैतणी प्रसापणी भीमड़ा समदड़ा हिंगुला मारतकी सोप्रभा अच्छिदा अधरा मारतकी गिंगली हिंगली ठिंगली पिंगला चिकनी चरकटा चरपटा चामटा अचकड़ा तव प्रसाद अच्छिदा पिता असिता अधरी अकटा अखटा अछटा दुधरी अंजनी अंबका अश्री तारणी अभरंग अधरा जगत उधारणी अंजनी गंजनी सक साकड़ी शीतला सिंधरी सोप्रभा सामला तोतला संभरी गंभरी अंभरी अकटा दुसला दुबिखरका दुर्कटा अमिटा पैरवी पैहरी पूचरा भावनी त्रिकुटा चरपटा चावड़ा मानवी जोबना जय करी जम्भरी जालपा तोतला तुंदला दंतली कालका परमणा निप्रभा भावना पैहरी बरबदा दात्रणी शस्त्रणी छय करी दुर्कटा दुभ्रता दुधरा दुर्मदी अत्रटा अछटा अजटा अभिदे तंतला अंतला संतला सामजा भीमड़ा पैहरी भूतला भावजा डाकणी साकणी झाकणी काकड़ा किंकड़ी कालका जालवा जय मृड़ा ठिंगुला हिंगुला पिंगला ब्रासनी शस्त्रणी अस्कनी सुलुणी सासनी कन्निका अन्निका तन्निका तालरी रक्त का सकत का भगत का जय करी चिंगड़ा पिंगड़ा जिंगड़ा जालपा जोगणी भोगणी रोग हरी कालका चंचला चावड़ा चाचरा चित्रता तंतरी पिंबरी जठनी छिंचला दंतुला दामणी दुर्कटा दुभ्रमा क्षुद्रता निद्रका निर्भ्रमा निर्घ्रमा कदरका चूड़का चारका चापणी चित्रणी चावड़ा चिंपला चापणी बिसन पाता प्रसाद पर
कैसे के पायन प्रभा उचारो जानक निमट निपट अघट अमृत संपट सुबट विचारो मन मत करे चरण कमलन पर हुए मन मत गुंजारो मात्र शब्द शब्द वितरण कोल साधु कुली उधारो विषण पत काफी ता दिन देह सफल कर जानो जा दिन जगत मात पर फुलित हुए देह विजय प्रदानो ता दिन शस्त्र अस्त्र कट बांधो चंदन चित्र लगाऊं जा कहो नेत निगम कह बोलत तास सो बर जपा सोरठ तव प्रसाद कथता अंतरजामी अभय भवानी अति निरक प्रेम पारस को चित की वृता पछानी आपन भक्त ज्ञान पव खंडन अभय स्वरूप दिखायो चक्र रह पेख मुनजन स्वर अजर अमर पद पायो सोबत बामे पान कृपाणी जातर जाच किन्नर असुरन की सब की क्रिया हिरानी जातन मद कीटब कव खंडियो सुमन सुम सिंगारे सोई कृपान निदान लगे जगदान रहो हमारे जातन बिड़ा लाच चथरा देख खंडन खंड उड़ाए धूली करण धूम लोचन के मासन ग्रेदर जाए राम रसूल कृष्ण बिशना देख काल करवाले कूटे कोट उपाय ताए सब धाके बेन तय भजन न छूटे सूई तव प्रसाद कथदा सोबत पान कृपान उजारी जातन इंद्र कोट कई खंडे बिशन क्रोर त्रिपुरारी जा कहो राम उचर मुन जन सब सेव ध्यान लगाए तस तुम राम कृष्ण कई कोटक बार उपाय मिटाए अनभ रूप स्वरूप अगंजन कव कवन बिद गईया जय बसर रटत गुण थाकी कब जैवे कब तैया भूमका अस्पताल जवन कर चौदह खांडव बिहंडे जगमत ज्योत होत भूतल मै खंडन अभ्रह मंडे सोरठा विशन पद जय जय रूप अरेख अपार जास पाए प्रमाए जय जय भीम को शिव दया द्वार जास पाए लग्यो निशेष है कार मा तन एक देव ते संस पे भाग जास पाए अनेक किशन राम पाए किते पनकाल पाए बिहान काल को अनकाल कह अकलंक मूर्त मान जास पाए पहो सब जग जास पाए बिलान ताय तय अभिचार जड़ करतार का इना दान नार हर जान का इना लेत तय परोस परियो पसुज है मोहे बद चेत राम कृष्ण रसूल को उठ लेत नित प्रतनाव कहाँ वह अब जियत जग में कहाँ तिन को गाँव दो सोरठा आस क्यों ना पिछानी जे होए है अब है न फल त्राहे भजत बहान तोय कश फल दै तास सेवा जा सेवत होए पूर्ण काम होए मनसा सकल पूर्ण लेत जा को नाम विष्ण पद राम कलिता प्रसाद ऐ विद कीनी जब है बढ़ाई रीजे देव दयाल तह ऊपर पूर्ण पुरख सदाई आपन मिले देव दर्शन पयो सिंह करी असवारी लीने छत्र लंगरा कूदत नाचत कण दै तारी राम कलीन चमकत अस्त्र छटा शस्त्रण की बाजर डौर अपार निर्तत भूत प्रेत नाना बेध डहरत फिरत बेताल कोहरत फिरत काकणी कोहरत डहरत कठन मसाना कैरत गगन सघन रेपख दहलत बिडरत ब्योमान देवी बात सारंग बिशन पद तव प्रसाद कछ बर मांगा हो पूत सियाने पूत भविख नहीं तुमरी सरसाध चरित हम जाने जो वरदान जो सो मांगो सब हम तुम्हें दीवार कंचन रतन बजर मुख

एक ओंकार श्री वाहगुरु जी की फतेह है। श्री भगवती जी सहाय अथ श्री शस्त्र नाम माला पुराण देखी अते पातशाही दसवीं दोहरा सांग सरदवी साहेब अरती तुरत दरबार सत्रां तक कवचांत कर करिए रछ मार दोहरा अस कृपान तारा तरी साहब सूल जमदाड़ कब चांदक सतरांत कर तेग तीर तरबाड़ अस कृपान खंडो खड़क तबक तबर अरतीर साहब सरोई सह थी यह मारे पीरा तीर तुई सह थी तुई तुई तबर तरबार नाम त्यौहार हो जो जो पै पै सिंध पापार काल तुई काली तुई तुई तेग अरतीर तुई निशानी जीत की आज तुई जगबीर तुई सूल सह थी तबर तू निखांगा अरबार तुई कटारी सेल सब तुम्हें करत कृपान शस्त्र अत तुम ही सिपार तुम ही कौत निखांगा कब चांतक तुम ही बने तुम व्यापक सर्वांग श्री तू सब कारण तुई तुम विद्या कुसार तुम सबको अपराज ही तुम ही लेह बार तुम ही दिन रजनी तुई तुम ही जीवन उपाय कौतक हिरण के नमे तिनमो बाद बढ़ाए अस कृपान खंडो खड़क साहब तेग दरबार रच करो हमरी सदा कब चांतक दरबार तू ही कटारी दाड़ जम तुम विश्वर बार तो पत पत जे लीजिए रश दान जान बांक बजर विशो तुई तुई तबर दरबार तुई कटारी सहती करिया रच मार तुम्हें गुड़ तुम्हें गदा तुम्हें तीर्थ फंग दास जान मोरी सदा राज करो सर्वांग छुरी करम रिप कर तुपन खंजर भुगता नाय अर्ध दृजक सब जगत को मोह तुम लेव बचाए प्रथम पाव बावह जग तुम ही पंथ बनाए आप तुम्हें झगड़ा करो तुम ही करो सहाय माच का जबारा तुम नावन अवतार नार सिंह बवदा तुम ही जगत को सार तुम ही राम श्री कृष्ण तुम ही विष्णु को रूप तुम ही प्रजा सब जगत की तुम ही आप ही तुम ही बेपर क्षत्री तुम ही रंग कर दाव साम दाम हर दंड तुम ही भेद पा तुम शीस तुम ही काया तुम तय प्राणी के प्राण तय विद्या जग बत्र बकत्र होए करे वेद बखियान बिशक बान तन खागरपन सर कैबर जय नाम तीर खतंग ततार जो सदा करो ममका तैनी राले सत्र आर मृग अंतक ससमान तुम बैरन पृथ्वे हरु बौरो बजय कृपा तुम पाठ सपासी परस परम सिंध की खान ते जके राजा पय दीय तब जय प्रदान सी सत्र अर आर अस खंडो खड़ कृपान सकल सुरेसर तुम की भगत अपनो जन जाम धार जम दाड़ा जबर जो धान तक जय नाय लूट कूट लीज तिने जे बिन बांधे जाए बांक बज विशो विशिक ब्रह बान सब रूप जिनको तुम कृपा करी पाए जगत के पुप शास्त्र सम्रांत कर सिपर आर समशेर मुक्त जाल जम के पहे जिन्हें कहो एक बेर सैफ सरोई सत्र सारंगार जय नाम सदा मारे चित बसो सदा करो मम इत श्री नाम माला प्राण श्री भगवती प्रथम ते आय समाप्त।

सुभय बनाए, जे पूजा असकेत की नित पत करत बनाए, तिन पर अपनो हाथ दे आस तोज लेत बचाए। चौपाई दोष्ट दोष्ट दैत कछ बात ना जानी, महाकाल तन पुनरिष्ठानी, बल अप बल अपनो ना बिचारा, गर्भठान जी बौर हंकारा, रे रे काल फूल जन जाहू, बौर आन संग्राम चाहू, एक निदान करौरण माही, कह अस तुज कह दान मनाही, एक पावत युद्ध ना भाजा, महाराज दैतन का राजा, आंताओ गीत गगन लै गए, बात बिसक तऊ हट पाए, असुर अमित रण बाण चलाए, निरख खड़ग तुज काट गिराए, बीस सहांसर असुर परबाना, श्री अस तुज छाडे बिदनाना, महाकाल पुन जी मैं कोपा, तनुख टंकोर बहुर रन रूपा, एक बाण ते तुझे गिरायो, द्वितीया सत्र को शीस उड़ायो, दोहों बिसिख कर द्वै रथ जागर काट दए, छिन मैं छिन एक मैं बकरा, चारै बाण चार हूं बाजा, मार दए सब जाके राजा, बहुर असुर।

अर्ध सैस फोन तीन गहि जय भादव सुदी अष्टमी रविवारा तीर सतद्रौ ग्रंथ सुधारा संबत सत्रह सैस पणि जय अर्ध सैस फुन तीन कहि जय भादव सुदी अष्टमी रविवारा तीर सतद्रौ ग्रंथ सुधारा इत श्री चरित्र पखे आने त्रिया चरित्रे मंत्री भूप संवादे चार सौ पांच चरित्र समापत मस्त शुभ मस्त।

फतेह। गुरु पंथ खालसे दी दिना दिन चढ़दी कला रखनी सच्चे पातशाह जी महाराज।